0: की क्षणता में बने दे बाहर जो माता से रहता थे फल नो नियो बोले अफेट जो रहता साउदी बाकुंडा से नियो पूजा बत्ती ने बिसन
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा सीरा तुन माई का तक आमी ना इन रोमा है ना अतो कोलिया कौन बा जुविंतुरी नी लिली जुविंतुरी ने पापेल जुविंतुरी नी ना कुनी